हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री

काल सुमरत है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे शिष्ट सजिया आपे सब इको शब्द वर्तदा जो करे सोहोई जो करे सोहोई वड्याई गुरमुख दे प्रभ वड्याई

खोपड़ियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरे नाल चीरे गए उत्तियां खलां ते लहाइया सवा मर्दे पीसने पीसे उन्हां दा ध्यान सारे इस बारी

बहुत प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोरी है, बाही जना की पकड़ी है, सिर की जय बाही ना छोटी है। असि जकारा बुलावे, सारे ने उच्ची वाह करनी है।

0: नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिरग मुकत सब होग।
1: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नंगे ही जंगल दे विच घूम रहे ने फिर रहे ने। कहते ने
0: नगन

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

نام کے پارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ اکاش کدے تے کھڑا ہے شبد نام دے وہ یہ تھلے پلر نہیں نے یہی سمجھ لے بچے دا جنم نہیں ہویا اُدھی خوراک ماتا کو آ گئی کون بیٹھا ہے انہوں سمجھ لے بڑا ضروری ہے پرچار वाहिगुरु वाहिगुरु जपो ते निश्चा ना ना होवे ते समझ लो 5% मातम निश्चय कि जो मैं जप रहा वा ये अटल प्रकाश हक सतनाम जो ये मैं जप रहा वा सब कुछ जिन्ने मर्जी खलेरे कोई पाले तिन जाने पर ए सौदा नाल जाना जो निश्चय ना काम करो ओदा महात्म 100% हो जाए निश्चय ना होवे काम करन विच एक निश्चय ले 2 मिनट ला रहे हैं पंच हाँ कई कहते ना जी विकार बड़े आते हैं विकार जागते जी वासनाव तंग कर दी है कई वासनाव असं समझते हैं गलत है उन भोगने भी हैं फिर 2 दिन बाद फिर वो देखते हैं पता गलत तो कहते सी वासनाव उस दिया ज्यादा जागती हैं जिदे विचार नीवे ने विचार फलके ने जितने विचार दसम द्वार दे लगे आंदे ने ना नौ द्वारे तो टप के उतली किरिया विच ओदी वाशना खड़ जांदी ओ कबूतर दी मिसाल दिंदे सी कबूतर कहंदे कबूतर जदों बहिंदा ना होर तां कबूतर बैठे होण उहनां नूं चुंझां वी मारू शरारतां वी करू कई कुछ हिलेगा जुलेगा तंग करेगा थोड़ा जदों उड़ारी मारदा फिर ओ आनंद लैंदा खत्म चुंझा मारनी है आपको सतनाम खत्म शरारता सब कुछ हुण काली दी उड़ारी दा आनंद लैंदा अपने विचारां नूं जब तक नीवा रखेगा तो चुंझा भी मारेगा लड़ाइया भी करेगा पंगे भी लेगा कई कुछ करेगा जरा जा विचारां नूं लै जा दसों द्वार की उड़ारी तो फिर तू भी आनंद माण उस उडारी का अक सतनाम ये बहुत अलग के विचार मैं तुम अपनी गल जल्दी दसना गुरु जी हो रही 3 दिन हो गए एक विचार तंग करी जा रही जवाब नहीं आ रहा दिमाग की हल कटा वो बंदे की परेशानी की हल कटा आज इतने दर्शन करने तो घंटा क पहला दिमाग जवाब आया उस तो बाद टिक गया काम जवाब दे तो इशारा जब तक विचार हेठा ने कबूतर बैठना ना थले आता है चुंझा मारता शरारत करता वो कर रहा है सब कुछ जो उत्ते उड़ारी सब कुछ खत्म हूं उड़ारी मार रहे हूं अपना आनंद ले रहे है ऐसे खा जब तक विचार सब नौ द्वार जने तेरा ध्यान वाशनावां वल भी जाएगा होर कई बने जाएगा चुंझा भी मारेगा पंगे भी लेगा इहदे नाल ए करदे आ इहदे नाल आ करदे आ जदों तेरे विचार थोड़े उत्ते नूं जाणगे तेरा जीवन भी उच्चा जाएगा ये बहुत अलग है दास ने कई वारी ट्राई की थी बच्चे नूं दवाई दिंदे होवां ना कई वारी पहली पौड़ी पढ़ के दई दी कई वार नहीं की पता होना कि नहीं असर गया जदों विचार च ताकत आ जाए नहीं इन्हें अपना नाल बाणी ने असर करना ही करना फिर होगा जरा दूजा वचन गुरु नानक का इन इस ढंग संभालना बाबा जी ने कहा शब्द का अभ्यास करना शब्द का अभ्यास इस निश्चय नाल करना कि बाकी सब प्रकाश खत्म हो सकते ने एक शब्द का प्रकाश जरा खत्म नहीं हो सकता ये वो तारे जरा तेन उस घर च लै जाएगा शब्द तारे सो दर तेरा क्या सो घर गुरु का शब्द वो दर है वो प्रकाश के घर लै जाता परमेश्वर के प्रकाश के घर इस निश्चय न शब्द का अभ्यास करो कि होर कोई हिंदुस्तान का राजा बन जाए होर सारे मुल्कों का राजा वह एंड की है मिट्टी

जिन्हां नूं दुश्मन भी अपने प्यारे लगते हो। भाई कन्हैया ना अपना ना दुश्मन, गुरु दा मुख जान के पानी पिला दिंदा। ओ भाई कन्हैया जिन्हों गुरु कलगीधर पातशाह ने वह बख्शिश की थी, क्या जिथे भाई कन्हैया तू पानी पिलाना आ मलम भी फटा दे ला दिया। आ सिख दा प्यार है, आ सिख दी भावना है, जिसनों बेगाने भी अपने लगते बस वो असल विच सिख है। पर होवे कोई भाई कन्हैया।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना। ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे, आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए। तन मन धन दा माण।

भाई मंद जी राह ही भुल गए, जिस राह तो गए सन वो राह ही भुल गए। तुरिया आउंदिया एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदिया गाउंदिया बरसात जोर दी। पर जो भाई मंझ जी उथों की लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पे। अपने आप नू संभालिया, लकड़ा नू बोचिया, लकड़ा कितने डिग ना पे। पर एकदम खूह विच डिगे। पर इधर साहब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन का आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नू कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पे। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नू नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले। अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता सिर ते लगणा। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नू तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले। लकड़ां नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ां चुकियां भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल

ए नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह विच खलोतिया कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां पहला लकड़ां नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिलियां ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई माझ जी ने कहा ते गुरु अर्जन दे पातशाह दा फिर मन भरिया कहन लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडी पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

आप ते डिगे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहला लकड़ा नु बाहर कढ़े, फिर रस्से नाल पाई मांझ नु जदों बाहर कढ़िया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता, इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता। मंज गुरु का गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का वोह था जग लंघना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने फिर भाई मंज नू मंजी बख्शिश की थी। भाई मंज जिन्हां ने सतगुरु नू सेवा करके प्यार करके अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया। आओ भाई आप भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंझ वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लेंगे, गुरु तो वारी हो जाइए। ताई का गुरु बख्शिश करेगा किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, उह सिख नूं गल नाल ला लवेगा। आओ भाई मंझ दे गीत गा रहे हां, डिग पया पर पंड ना सुटी, खड़ा अडोल उह सिर ते रखी, सतगुर आए बचाओ। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ लई, बख्शिश कर दित्ती। जे भाई मंझ ते बख्शिश हो गई, आओ भाई कि साडे ते भी बख्शिश हो जावे, कि आपां भी भाई मंझ वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए ते फिर साडा लोक सुख।

जीव जंत उस पानी अंदर रहण वाले हन, फिर तेन उन्हों का भार से जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा।

जीव अमृत वेले उठ ते साहब आखदे ने अमृत वेले उठ के स्नान कर। मेरा इशनान ही नहीं करना, इशनान करके उस परमात्मा अकाल पुरख की भगती कर, उस प्रभु का सिमरन कर। फिर प्रभु का सिमरन करेगा तो होगा कि कर।

सिमर सुख पाओ, सिमर प्रभ अपना, अपने प्रभु नु सिमर। उस परमात्मा दे नाम दी आराधना कर, ते जीव वेख फिर सिमरन विच सुख कितने। ते साहिबा ने अमृत वेला क्यों चुने? जीव कहिंदा महाराज होर भी किसे टाइम ते नाम जपे ही जा सकदा है, पर सैम आखदे ने नहीं जीव अमृत वेला क्यों चुनेंगे? अमृत वेले नाम जपन लई क्यों सतगुरु ने हुक्म कीता है? कहिंदे ने जो अमृत वेले बिरती लगदी उस तो बाद नहीं लगदी, क्योंकि आगाध ही प्रभात तो है। इस संसार दी वेख लो, ये नहीं कि कितने नाम दी ही कहेंगे, ये सारे संसार दी आगाध जेड़ी ये नाम तो है, अमृत वेले तो प्रभात तो है। जीव तू प्रभाते क्यों नहीं उठता? तू प्रभाते ही उठ के परमात्मा दा नाम जप, नाम दे विच लीन हो के ते वेख कितना सवेरे आनंद आउंदा है, कितना मन जुड़दा है, कितना एकाग्र चित हुंदा है। साहिबा ने फरमान कीता कि जीव अमृत वेले ही उठ के नाम जपना तेरे वास्ते ठीक है।

0: ある。
1: कैसा ख्याल?
0: जेड़े सिर साईं दे अगे निवदे नहीं, जेड़े मन चुकदे नहीं, जेड़ी रसना नाम जपदे नहीं,
1: कहिंदे रसना नूं भी कट दे,
0: ते जेड़ा सिर चुकदा नहीं परमात्मा दे अगे कहिंदे सिर भी कट दे।